पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू

हमेशा हमेशा तुम मुझ में रहेगा भवेन भव्या ओब मगे मव्यय तुय प्रेम ज्ञान पुद्मा कर अल्लाह ज्ञान मकने इति निवनति एवित हेतु अग्ने प्रेम अट निक्म्यामट अनंत हेतु इतिन जीवित वल अत्यामीम सहायम पमनाई नोकिया हो नो दनवाय अन्नट अत्ते पिन सारणागते एकटाई पुंची कला मलक मगेन मट अद दिय हके पमनाई सची नाउलिन ओब हरि अपूर्व कियमनक कियनवा नोकिया हो नो दनवाय अन्नट अत्ते पिन सारणागतेयक वेतमाई पुंची कला मलक मगेन मट अद दिय हके पमनाई सची अबे प्रेमे मन तरम सुविसाद कुछर आदरें समुदय है कि दो बेट या नत्ते हुंद कटने एक तनक के नवा है महिता दागान पुलुवां अन्ने थने एनका जीवते अलगेने आंड हरियत सची वागे लबें दिया सुब मंदारम रैक वेवा हेतु अग नुकिया में वेन वेन मिनिसुन पिलितुरु नति प्राश्न सिया गणना कने कागे हदवते इतिरि कर यानवा वाचने के निम कलह की बैंदीमक निहाड़ कम के बिद दमने का आदर अने वे प्रेम के अने अल्लाह के निन्न के विद्रक ने वे यान्न मोने नम एस दिह बलला ऐ के ने के ट पिलितुर अग दीले आने का है मुकते हेतु अक नो देनांडन हदवता बेन भी में वेदना वट वड़ा पीली तुरुन्ने तिनी है न कमें मेरे ना लरंगन बस ना एका पेमुलु कथा वट मोने करन नियमार्थ कथने वचने की पेकिं देना वा हेतु अक नोदन अंडन हदवतक बेन भी में वेदना वट वड़ा पीली तुरुन्ने तिनी है न कमें मेरे ना